0: ए तंबूरी बात कब की तफीन दीरा बियारी ही है तुम्हारे भल के नाम ए था कनू फारिस ए जो ई आपसी ए था कनू फारिस ए जो ई आपसी
1: ओ बशीर